0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपकी जिंदगी में एक प्लेयर फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। वो प्लेयर फ्रेंड आपको जिंदगी भर बताता रहेगा कि डेटिंग ऐप पर क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि मेरा एक प्लेयर फ्रेंड है, वो एक आरजेबी है, लेकिन उसका नाम मैं नहीं लूंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसने मुझे ये सिखाया है कि अगर आप एक बंदे हो एंड यू आर ऑन अ डेटिंग ऐप, आप अपने बारे में वो चीजें मत लिखो जो आपको लगता है कूल है, वो चीजें लिखो जो आपको लगता है कि लड़कियों को लगता है कि कूल है। जैसे कि अगर आपने ये लिखा दैट यू हैव अ डॉग, नाउ अ गर्ल इज गोइंग टू नॉट जस्ट फाइंड दैट वेरी क्यूट, लेकिन एक लड़की को ये भी लगेगा कि अरे ये कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ये अपने साथ साथ एक और जीवित चीज का ध्यान रख सकता है, एके अ डॉग। दूसरा, मान लीजिए यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू शुड टोटली राइट दैट इन द बायो, क्योंकि लड़की को ये लगेगा कि आप ए फनी हो, बी यू हैव अ जॉब, तो आप लुखे नहीं हो। सो जब आप डेटिंग ऐप पर जाओगे, जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू रिमेम्बर कि डेटिंग ऐप में चीजें जो लिख रहे हो अपने हिसाब से मत लिखो। अपनी नजर में हॉटेस्ट लड़की को दिमाग में रखते हुए ऐसी चीजें लिखो दैट विल अट्रैक्ट हर। Isn't that a crazy AF tip? Aisi hi tips and tricks ke liye. Why don't you stay tuned and find me on Insta ya FB. Mera naam hai.

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: One entire year after dating your boyfriend, you met his first cousin और आपने realize किया आपका सच्चा प्यार तो boyfriend का cousin है रे.
2: The secret box.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मुकाम आ गया है, then it is time for you to get Roshified, don't you think? Hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. And while you do that, telling me your confession, मेरे साथ line पर है मेरी mystery caller. Hello, naughty girl.
3: Hi, Roshi.
1: कैसे हो आप?
3: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप स्कूल जाते हो क्या? आपकी कन्फेशन हैज समथिंग टू डू विद स्कूल, बिकॉज़ यू साउंड लाइक अ लिटिल स्कूल गर्ल.
3: आई डोंट नो, पीपल कीप ऑन टेलिंग मी दैट.
1: हाँ, लेकिन आप कितने साल के हो?
3: मैं अच्छा हाँ मैं क्या कहते हैं मैं 21 की हूँ.
1: अच्छा हाँ मैं 21 की. आप सोच के क्यों बता रहे हो? आर यू श्योर यू आर 21 इयर्स ओल्ड? हाँ
3: ऐसे ही थोड़ा मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है ना अपने एज बताने में.
1: क्यों लेकिन? अच्छा हाँ, बट बिकॉज यू आर साउंडिंग सो मच यंगर. बट मिस 21 ईयर ओल्ड सीक्रेट कॉलर, क्या है आपका कन्फेशन?
3: सो सिंस मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि मैं 21 की हूँ एंड मेरा कोर्स ना खत्म हो चुका था. तो आई वॉज लाइक कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड सिंस मेरा कोर्स भी खत्म हो गया था एंड मैं क्या यार मुझे अब जॉब करनी है. तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी. मैंने 2-3 महीने इंटर्नशिप की बहुत, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो रहा था. मैंने सब कुछ करके देख लिया. मैंने पहले तो मैं कुत्तों की तरह काम कराया है लोगों ने और स्टिल मेरे को ये जॉब नहीं दे रहे थे. तो मैंने साम दाम दंड जो हो सकता था सब कुछ किया रोशनी, लेकिन स्टिल मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. फिर मैंने देखा कि मैंने ना नोटिस किया कि मेरे जो बॉस है वो ना बहुत ऐसे रोमांटिक सी बातें पता नहीं करने लगते हैं मेरे से जब भी मुझे देखते हैं एंड चलते फिरते लाइक मुझे चेकआउट करते रहते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं. तो ना ऐसे उनकी थोड़ी ऐसी रोमांटिक जेस्चर्स जो है उनके ऐसे ही रहते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो एक और लास्ट ट्रिक करके देखते हैं. तो मैंने भी ना वो रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, उनको मैंने भी उनको भाव देना स्टार्ट कर दिया. उनके साथ मैं एक दो डेट्स पे गई, उनको मैंने अच्छे से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की मैंने उनसे एंड फिर फाइनली ऐसे बहुत टाइम के बाद मेरी अभी रिसेंटली जॉब लग गई. ठीक है, हाँ मतलब जिसे कहते हैं ना कि लास्ट ट्रिक वो काम कर गया, कुछ और काम नहीं किया बट मेरी जॉब लग गई.
1: तो अब क्या सीन है आपका और आपके बॉस का? कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर जॉब, बट क्या अब आप और आपके बॉस आर यू गाइस सीइंग ईच अदर या क्या सीन है?
3: वही है, अब जैसे पीठ पीछे बुराई मैं करती हूँ उनकी, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, बट वही फेस पे तो बोलना पड़ता है और मेरा बाबू हो मैं इसका और क्या.
1: आई एम जस्ट होपिंग कि आपके बॉस ये ना सुन रहे हो. और ऑन दैट नोट, हियर इज सम रोशिफिकेशन फॉर यू फॉर योर एब्जेक्ट ऑनेस्टी.
4: यू've been roshified.
1: थोड़ा संभाल के चलना मिस्ट्री कॉलर, बॉस को असली प्यार हो गया और आपको नहीं हुआ ना तो लेने के देने बढ़ जाएंगे. ठीक है? इतनी क्यूट है तू. ऑल द बेस्ट टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी वेरी क्यूट मिस्ट्री कॉलर की तरह यू हैव अ कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू डू इट ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Yeah.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Listener MA, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
6: शशि वो मैनहट्टन है।
5: मैनहट्टन
7: मैन As me, hat, topi, or mom, what's tan in Hindi?
6: Tan matlab wo dhoop ki chhaap.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba!
2: Roshi Baba ki
3: Calm down, my bhagjano. Let me tell you something very important for your relationship, especially if you're a guy. Dhyan se sunna. Agar wo aapse ye keh rahi hai, apne nai nai relationship mein, yaar hot pink sale lagi hai, thode se cosmetics khareed de, ya phir yaar phone khareed de, uske baad main tere saath chutti par chali jaungi, ya phir yaar ye lehenga dila de, best friend ki shaadi ho rahi hai, then chances are that aapse zyada she's into your wallet and you don't want to be taken for a ride, do you? Aisa ek baar ek ladki ne koshish ki thi mere bhai ke saath karne ki, and he was like, yaar वैसे ही मेरे पास पैसे कम है, ऊपर से तू मुझसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, सो दैट यू कैन हैंग विद मी. आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट. और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आई थिंक यू शुड डू द सेम थिंग दैट माय ब्रदर डिड. और अगर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I have beard में dandruff and it's quite a weird place to have dandruff और ये मैं किसी बंदे के साथ नहीं discuss कर सकता let alone my bandi but you totally have to help me out Roshi.
2: Roshi के DM से
1: ये message मुझे पारस ने लिखकर भेजा है and पारस I don't know if I was supposed to take your name or not but let me tell you one thing कि आप एक लौते इंसान नहीं हो जिसकी दाढ़ी में dandruff आती है a lot of guys have that and I know कि आप इस weekend पर एक date पर जा रहे हो and you're feeling extremely nervous क्योंकि first date है and you want to wear a black shirt और उस पर dandruff सबसे ज़्यादा दिखती है but because आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक दो तीन दिन का टाइम है फॉर योर डेट लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सबसे पहले तो अगर आप अपनी बियर्ड को ऑयल करोगे अ लॉट ऑफ गाइज डोंट डू दैट तेल लगाना इज द की इट कुड बी कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल गर्म करके तेल लगा लो अपनी बियर्ड में कीप इट ऑन फॉर अबाउट हाफ एन आवर उसके बाद उसे शैम्पू करो अगर आप ऐसा दो दिन भी कर रहे हो योर स्किन ऑफ योर बियर्ड मतलब आपके चीक्स और चिन विल बी बेसिकली नरिश्ड इनफ कि उसकी डैंड्रफ काफ़ी कंसिडरेबली कम हो जाएगी और दूसरा शैम्पूइंग इज की आप रोज़ अगर चाहो तो अपनी बियर्ड शैम्पू कर सकते हो एंड तीसरा एक्सफोलिएशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट तो बेसिकली जो डेड स्किन रहती है ना बियर्ड के नीचे दैट इज़ व्हाट लार्जली कॉजेज डैंड्रफ तो या तो आप एक्सफोलिएशन क्रीम यूज़ कर सकते हो जो चेहरे के लिए आती है और अगर वो आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी और चीनी के ग्रैन्यूल्स मिक्स करो उससे अपनी स्किन स्क्रब करो ये होममेड नुस्खा है मेरी नानी ने सिखाया था वर्क्स फॉर मी ऑल द टाइम एंड दिस विल एक्चुअली मेक श्योर कि आपकी डैंड्रफ ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है अगर

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

माता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned arthat Jacob Batalon, also MJ arthat Zendaya and Peter Parker yani Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you ki ye film puri tarah se Tom Holland ke shoulders par rest karti hai. Kyun, kya, kaise, wo ja kar dekho. Also, there's a particular scene between John Bernthal arthat Frank Castle aka Punisher and Tom Holland arthat Peter Parker jo theater se aane ke baad bahut der tak tere ko yaad rahega. Also, if you have kids around you, enjoy it fully kyunki kai baar bachche Bollywood ki film ki tarah seetiyan maarte hain, taaliyan bajate hain, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. Agar tune Spider-Man ke franchise ke pehli film mein nahi dekhi hain, to please YouTube par jaakar kahin par us film ke pure recap jo hain wo video dekho and then see the film. Tere ko kuch extra maza aayega. For now, Spider-Man ki wajah se Jeetu Raj Tom Holland ka kuch extra fan ho gaya hai. Oh, also, don't forget to catch my review on Instagram at Mirchi Jeetu Raj, jahan par kuch extra baatein batai hain Jeetu Raj ne. Wo kya hai? Okay, I told you, Instagram, Mirchi Jeetu Raj. For now, Spider-Man Brand New Day. By the way, कई लोग पूछे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

आप एक हेट्रोसेक्सुअल इंसान हो, बेसिकली इसका मतलब ये है कि यू आर इंटरेस्टेड इन पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, और आपको लग रहा है कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, नई नई बनाई है, डजंट मैटर, वो भी हेट्रोसेक्सुअल है, वो भी इंटरेस्टेड है दूसरे बंदों में, तो विच इज फाइन, क्योंकि आप लोग चिल कर रहे हो विदाउट एनी टेंशन बिटवीन द टू ऑफ यू, ये वो. एंड देन सडनली आफ्टर बींग फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months, आपकी बेस्ट फ्रेंड टर्न्स अराउंड एंड सीज, यार तू मुझे काफी क्यूट लगती है. एंड यू आर लाइक, हाँ मुझे भी तो काफी क्यूट लगती है. एंड देन शी इज लाइक, नहीं नहीं मुझे ना क्यूट से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है. एंड आई एम लाइक, इसका क्या मतलब है सिस्टर? एंड शी इज लाइक, सिस्टर मत बोल यार, इट हर्ट्स माई इयर्स. एंड यू आर लाइक, एक सेकेंड, यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की क्यूरियोसिटी चल रही है? एंड आई एम ऑल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, वॉट योर प्रेफरेंसेज आर, वॉट काइंड ऑफ पीपल यू आर इन टू, वॉट काइंड ऑफ जेंडर्स यू आर इन टू, वो सब ठीक है. लेकिन जब मेरी बेस्टी मुझ पर हिट कर रही है और मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. मेरे फीलिंग्स इतने कंफ्यूज हो रहे थे ना, दैट आई वाज लाइक, यू आर ऑलमोस्ट माय बॉर्डरलाइन सिस्टर, यार क्या कर रही है, क्या कह रही है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में, आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट. नहीं, एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड इट टर्न्स आउट आई हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स इन लाइफ. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिसकी जिंदगी में एक ड्रामेटिक एएफ बेस्टी होती है उसकी जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होती है. सो माय बेस्टी डिसाइडेड टू गो आउट ऑन दिस डेट विद अ गाय जो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए ढूंढा कि बेटा अब उम्र हो गई है थोड़ी शादी वादी के बारे में भी सोचो. सो शी गोस आउट ऑन दिस डेट एंड बंदा इज अपेरेंटली लोडेड एंड स्टफ एंड बड़ी सी गाड़ी में उसे पिक करने आया एंड शी वॉज लाइक रोशी उससे ज्यादा बोरिंग इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था. मतलब ही टुक मी टू अ रियली नाइस 5-star चाइनीज रेस्टोरेंट. वो बोलता जा रहा था अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे. She said, by the end of that conversation, मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी दवाई नहीं खाऊंगी, कहीं इसकी जेब में मेरे पैसे ना चले जाए. She said, ना कि सिर्फ बोरिंग कंपनी, बंदे के बाल ऐसे लग रहा था 4 दिन से कंघी नहीं की, उसके जूते गंदे थे, मिट्टी लगी हुई थी, और शी सेड कि उसके जीन्स के नीचे ऐसे जो वो जीन्स घिस जाती हैं तो एक दो ऐसे लूज धागे निकलते हैं. शी सेड उसने वो धागे काटे भी नहीं थे, ऐसे लटक रहे थे. शी सेड बाय द एंड ऑफ द डेट मुझे ये पता था कि मुझे जिंदगी से क्या नहीं चाहिए एंड दैट गाय वॉज इट. ऐसे सिर्फ उसकी डेट नहीं है, मेरी इतनी सारी डेट्स हैं जो लोगों ने मेरे लिए सेटअप की है एंड आई हैव जस्ट कम बैक फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड आई कांट इवन टेल यू. अगर आपके साथ भी ऐसे लो की डेथ हो रही है बिकॉज आपके मम्मी पापा या बेस्ट फ्रेंड ने आपको किसी के साथ सेटअप किया विच वॉज अ डिजास्टर, आई थिंक वी शुड टोटली टॉक अबाउट इट. एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: One entire year after dating your boyfriend, you met his first cousin और आपने realize किया आपका सच्चा प्यार तो boyfriend का cousin है रे.
2: The secret box.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मुकाम आ गया है, then it is time for you to get Roshified, don't you think? Hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. And while you do that, telling me your confession, मेरे साथ line पर है मेरी mystery caller. Hello, naughty girl.
3: Hi, Roshi.
1: कैसे हो आप?
3: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप स्कूल जाते हो क्या? आपकी कन्फेशन हैज समथिंग टू डू विद स्कूल, बिकॉज़ यू साउंड लाइक अ लिटिल स्कूल गर्ल.
3: आई डोंट नो, पीपल कीप ऑन टेलिंग मी दैट.
1: हाँ, लेकिन आप कितने साल के हो?
3: मैं 21 की हूँ.
1: अच्छा, हाँ, मैं 21 की. आप सोच के क्यों बता रहे हो? आर यू श्योर यू आर 21 इयर्स ओल्ड? हाँ,
3: ऐसे ही थोड़ा मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है ना एज बताने में.
1: क्यों? लेकिन अच्छा, हाँ, बट बिकॉज यू आर साउंडिंग सो मच यंगर. बट मिस 21 ईयर ओल्ड सीक्रेट कॉलर, क्या है आपका कन्फेशन?
3: सिंस मैंने आपको भी बता ही दिया है कि मैं 21 की हूँ एंड मेरा कोर्स ना खत्म हो चुका था. तो आई वॉज लाइक कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड सिंस मेरा कोर्स भी खत्म हो गया था एंड यार मुझे अब जॉब करनी है. तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी. मैंने 2-3 महीने इंटर्नशिप की बहुत, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो रहा था. मैंने सब कुछ करके देख लिया. मैंने पहले तो मैं कुत्तों की तरह काम कराया है लोगों ने और स्टिल मेरे को ये जॉब नहीं दे रहे थे. तो मैंने साम दाम दंड जो हो सकता था सब कुछ किया रोशनी, लेकिन स्टिल मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. फिर मैंने देखा कि मैंने ना नोटिस किया कि मेरे जो बॉस है वो ना बहुत ऐसे रोमांटिक.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैंने कहीं पढ़ा था एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली 100% ट्रू, प्रेशर प्रूव्स पीपल. जब आपके रिश्ते में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब कोई आपको 100 बार आई लव यू कह सकता है, लेकिन जब आपके रिश्ते पर प्रेशर पड़ता है, जमाने का, एक दूसरे का, एक दूसरे की डिफरेंट प्रायोरिटीज का, एक दूसरे के साथ रहने का, बट वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज यू नो देर आर लाइक पीपल सिचुएशंस दैट डिमांड दैट यू बी सेपरेट, उस प्रेशर में आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान आपसे कितनी मोहब्बत करता है. हाउ मच इज अ पर्सन एबल टू शो अप फॉर यू व्हेन देयर इज प्रेशर इन द रिलेशनशिप और फ्रॉम आउटसाइड द रिलेशनशिप. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहे हैं जिनके लिए मैं 100% शो अप करी हूँ, लेकिन दोज मैन हैव फेल्ड मी एंड मे बी दैट्स वाई आई एम सिंगल टूडे. लेकिन इवन वाइल आई एम थोड़ा सा रूमानी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ये आपके लिए सच है? क्या आपने भी नोटिस किया है कि जब प्रेशर होता है तब असली प्यार की समझ आती है? अगर हाँ या ना, हिट

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम। आज ना मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूंगी जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म मानी जाती है। वेल, कहते हैं कि इसी फिल्म ने संजय दत्त को ना एक और लाइफलाइन दी थी एट द बॉक्स ऑफिस। क्या इस फिल्म का नाम पता है आपको? हाँ, नाम ही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं पता तो चलो मैं ही बता देती हूँ नाम। अभी भी नहीं समझ में आया। वेल, इस फिल्म का नाम ही नाम है। इस फिल्म में थी नूतन जी, कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लो, अमृता एंड परेश रावल। वेल, फिल्म का नाम है और सारे रेट्रो फैंस ने आई एम श्योर इस फिल्म को देखा होगा बिकॉज ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म थी। और इस फिल्म में अगर एक और खास बात बताऊं, इनफैक्ट ये वाली बहुत ही खास बात है कि ये सलीम जावेद जोड़ी ने अलग होकर के ये फिल्म लिखी थी। जब दोनों यू नो दे पार्टेड वेज, तब ये सलीम साहब की सोलो फिल्म थी। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले सलीम साहब ने लिखा, इस फिल्म की स्टोरी सलीम साहब ने लिखी, इस फिल्म के डायलॉग्स सलीम साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में ना बहुत ही मज़ेदार कुछ चीज़ें हुई थी। बच्चन साहब ने एक कंडीशन रखी थी, क्या थी वो भी बताऊंगी वापस अश्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म के लिए रूमर था कि शायद बच्चन साहब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो संजय दत्त और कुमार गौरव का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर फिल्म नाम जिसमें थे संजय दत्त कुमार गौरव। जब ये फिल्म बनी ना तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट करी विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। वेल, रूमर ये उठा और बहुत सारी मैगजीन्स में ये लिखा गया कि शायद इसलिए क्योंकि बच्चन साहब उस समय संजय दत्त की और कुमार गौरव की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते थे, उसे एनालाइज करना चाहते थे। वेल, अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई उससे पहले भी जा की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में रिलीज हुई थी विच वर मेड विद ऑफ कोर्स कुमार गौरव एंड संजय दत्त, तो तब भी बच्चन साहब ये कर सकते थे ना कि इनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दो, उन्हें तो कौन ही मना करता। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको ये पूरी कहानी। कम राइट बैक, मेरा नाम है श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि ऐसा काम तो बच्चन साहब पहले भी कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी फेमस फिल्म जिसका नाम था नाम। इस फिल्म में थे संजय दत्त साहब, इसमें थे कुमार गौरव, नूतन जी, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह, परेश रावल, और सलीम साहब की लिखी हुई ये सोलो फिल्म थी। यानी सलीम जावेद ने जब अपनी जोड़ी अलग की तो सलीम साहब की लिखी हुई ये पहली वो फिल्म थी जिसके डायलॉग्स, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखा था। सो भाई हुआ ये कि जब ये फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो अमिताभ बच्चन जी ने मेकर्स ऑफ द फिल्म से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग देखनी है। सो पीपल थॉट कि ओ हो, बच्चन साहब ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायद वो थोड़े इनसिक्योर्ड हैं कि यू नो संजय दत्त वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके एक तरीके की ये कमबैक फिल्म थी। सो ही वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कुमार गौरव एंड संजय दत्त। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही होता तो जान की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में भी पहले इन एक्टर्स के साथ रिलीज हो चुकी थी, तो बच्चन साहब पहले भी ये रिक्वेस्ट कर सकते थे। फिर आखिर माजरा क्या था? माजरा एक्चुअली में ये था कि बच्चन साहब देखना चाहते थे कि सलीम साहब ने अकेले कैसी फिल्म बनाई है, जब वो जावेद साहब के साथ नहीं है, उनका स्टोरी कैसी है, उनका स्क्रीन प्ले कैसा है, उनके डायलॉग्स उन्होंने अकेले कैसे लिखे हैं, एंड क्या उनको पसंद आई या फिर नहीं आई। इसके पीछे भी इट्स अ लवली स्टोरी। कम राइट बैक, आई लेट यू नो। मैं हूँ श्रेया, only on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey.

also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सबकी बहुत तारीफ करी, उनको डिनर पे भी ले गए, लेकिन सलीम साहब को कुछ नहीं कहा, पर सलीम साहब समझ गए। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज नाम फिल्म की बात हो रही है। हाँ जी, संजय दत्त वाली नाम, या फिर आप कह सकते हो कुमार गौरव वाली नाम, नूतन जी वाली नाम, पूनम ढिल्लो वाली नाम, अमृता सिंह वाली नाम, ये सारे एक्टर्स इस फिल्म में थे। एंड इस फिल्म को प्राइवेटली देखने की रिक्वेस्ट करी थी अमिताभ बच्चन ने विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। सो एवरीबडी थॉट कि शायद वो कुमार गौरव और संजय दत्त को देखना चाहते हैं, एज इन उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली यू नो इस फिल्म में देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, शायद वो इनसिक्योर है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक्चुअल में बात पता क्या थी, बच्चन साहब देखना चाहते थे कि उनके इतने पुराने दोस्त सलीम खान ने ये पिक्चर अकेले कैसे लिखी है, बिकॉज दिस वॉज द फिल्म, द फर्स्ट फिल्म जो सलीम खान ने लिखी थी जावेद साहब से अलग हो करके। ये जोड़ी जब अलग हो गई तो सलीम साहब ने नाम के डायलॉग्स लिखे थे, इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इसकी स्टोरी लिखी थी अलग, एकदम सोलो विदाउट जावेद अख्तर। सो बच्चन साहब वॉन्टेड टू सी कि उनके दोस्त ने कैसा काम किया है अकेले, एंड उनको इतना पसंद आया कि वो उस रात इस फिल्म के सारे कास्ट एंड क्रू को डिनर पे ले गए और उनकी बहुत तारीफ की। एक नोट भी, एक हैंड रिटन नोट भी दिया टू द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म नाम, लेकिन उन्होंने सलीम साहब को कुछ नहीं कहा। जब सलीम साहब को ये बात पता चली, सलीम साहब समझ गए कि भाई अमिताभ बच्चन को ये फिल्म पसंद आई है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू एंड एक्चुअली नो तारीफ। आपका दोस्त समझ जाएगा कब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स सलीम खान ने अपने घर से ही उठाए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम, जिसमें थे कुमार गौरव और संजय दत्त। तो अगर आप ये फिल्म देखो ना, आपको दिखेगा कि संजय दत्त कुछ कपड़ों पे आयरन कर रहे हैं और उनको घसीट करके ना उन्हीं कपड़ों को कुमार गौरव पहन लेते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर के। सो एक्चुअली में ये सीन सलीम खान ने अपने घर में देखा था, जब सलमान, अरबाज और सोहेल में एग्जैक्टली इस बात पे लड़ाई होती थी कि कोई कपड़े आयरन करता था और दूसरा बंदा ना उन्हीं आयरन क्लोथ्स को पहन लेता था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वेल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जब राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे, नाम में पैसा लगा रहे थे, वो गए थे स्क्रिप्ट को सुनने सलीम खान के घर। आई विल लेट यू नो। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम,

कई बार ना आपकी जुबान को कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी आंखों का इशारा काफी होता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इसमें थे कुमार गौरव, संजय दत्त, नूतन जी, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो एंड अदर्स। लेकिन सबसे खास बात इस फिल्म की ये थी कि इसको सलीम साहब ने इंडिपेंडेंटली लिखा था, यानी जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, जब दोनों लोग अलग अलग रास्ते पे निकल गए, तब सलीम साहब की पहली सोलो फिल्म थी जो उन्होंने लिखी अकेले। यानी इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, इस फिल्म की स्टोरी लिखी। अब कहते हैं कि सलीम साहब की ये कहानी सुनने के लिए राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगाने वाले थे, ये स्क्रिप्ट सुनने के लिए उनके घर गए। तो स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ चेंजेस, क्योंकि राजेंद्र कुमार बहुत सारे चेंजेस बताते थे, स्पेशली जब उनके बेटे कुमार गौरव हो इन द फिल्म, सो उन्होंने कुछ चेंजेस बताने शुरू किए। अब सलीम साहब तो ऑलरेडी इतनी हिट फिल्में दे चुके थे, दीवार हो, शोले हो, सो मैनी ऑफ देम, तो जब उन्होंने चेंजेस बताए और सलीम साहब सामने के सोफे में एक कोने पे बैठे हुए थे, उन्होंने बस कहते राजेंद्र कुमार को देखा और राजेंद्र कुमार समझ गए कि ना ना ना ना, ये काम सलीम साहब के साथ नहीं करना है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, कोई चेंजेस नहीं भाई, जैसा आप लिखेंगे वही होगा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत कोशिश करी राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को ये समझाने के लिए कि इस फिल्म में मेन लीड उन्हें करना चाहिए। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। ये फिल्म जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म भी मानी जाती है और उनके करियर का यू नो टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। राजेंद्र कुमार जी ने ऑफकोर्स भाई फिल्मों की बहुत समझ थी और वो इस फिल्म को बना भी रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुमार गौरव इस फिल्म में मेन लीड में हो, एंड ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि ही न्यू कि कहीं ना कहीं कुमार गौरव का करियर, उनका फिल्मी रास्ता जो है वो थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन कुमार गौरव ने मेन लीड लेने से साफ मना कर दिया। What was the reason? बहुत ही खूबसूरत रीजन है जो मैं आपको कुछ गानों के उस पार बताऊंगी। Come right back, मैं हूं श्रेया, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

दोस्ती की जीत हुई, करियर के आगे दोस्ती चुनी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। ये जो फिल्म थी ये कुमार गौरव के पापा यानी राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, एज इन प्रोड्यूस करी थी। अब भाई उन्होंने ये फिल्म बना ही कुमार गौरव के लिए इसलिए थी कि वो चाहते थे कि उनके शेकिंग करियर को, उनके बेटे के लड़खड़ाते हुए बॉलीवुड करियर को थोड़ी लाइफलाइन मिले। और दैट्स व्हाई ही वांटेड कि दोनों कैरेक्टर्स में से उनका बेटा कुमार गौरव फिल्म का मेन लीड वाला रोल ले। लेकिन कुमार गौरव ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका करीबी दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त ये रोल करे। संजय दत्त का करियर भी उस समय काफी शेक हो रहा था। इनफैक्ट नाम उनकी कमबैक फिल्म मानी जाती है। कुमार गौरव को ये बात पता थी कि उनका दोस्त जो है वो अगर मेन लीड में आया तो उनके पास इतनी तारीफ नहीं आएगी, तारीफ जाएगी संजय दत्त के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पापा को समझाया एंड इस फिल्म में सेकंड लीड ली। ऑफ कोर्स उनके काम को बहुत तारीफ मिली, लेकिन हाँ लाइमलाइट संजय दत्त ले गए थे। ऐसी दोस्ती सुनी है पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे भी हूँ, RJ Shreya with Love, that's my handle, RJ SHREYA with

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

महेश भट्ट जी के करियर की भी ये टर्निंग पॉइंट थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। संजय दत्त की फिल्म थी ये। इसमें थे कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह एंड परेश रावल। अच्छा, महेश भट्ट के लिए ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई थी, एक थी अर्थ 1982 की और दूसरी थी सारांश 1984 की, और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, नाम ने इतना अच्छा काम किया कि उसके बाद महेश भट्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गुड डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। इस फिल्म की दो खास बातें और थी। नंबर वन, ये सलीम साहब की इंडिपेंडेंटली लिखी हुई पहली फिल्म थी। जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो सलीम साहब की ये फर्स्ट फिल्म थी जो उन्होंने एज अ सोलो राइटर लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखी थी। और दूसरी, ये संजय दत्त के भी करियर का टर्निंग पॉइंट थी। ये उनकी कमबैक फिल्म थी क्योंकि इससे पहले 5 फिल्में जो उन्होंने करी थी वो सब एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म नाम की बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम है श्रेया। इनकेस आपको मुझसे कुछ बात करनी है ऐसे 1-to-1, तो फेसबुक और इंस्टा पे RJ Shreya Would Love, दैट्स माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves.
3: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ नाम फिल्म की बात हो रही है। अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये रिलीज तो इस फिल्म के साथ हुआ था इन 1980s, लेकिन आज भी पंकज उदास जी का जब ये गाना सुनो ना, आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई ना कोई ऐसा यार, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर याद आ जाता है जो कभी आपको कुछ लेटर्स लिखता था। एंड यू नो व्हाट, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि मूवी थिएटर्स में उस समय हंगामा होता था कि इस गाने को फिर से चलाया जाए। तो आफ्टर द मूवी नाम यूज टू फिनिश, इस गाने को फिर से रीरन किया जाता था। एंड स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे ना मिडल ईस्ट से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो वो इस गाने के साथ बहुत कनेक्ट कर पाते थे। एंड द सॉन्ग इज चिट्ठी आई है आई है, पंकज उदास जी का एक गाना। ओहो, इसको ना थोड़ा सा आंख बंद करके कोई खास हो उसको याद करते हुए जोर से सुनना। पुरानी जींस पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार हमेशा अपने प्रोडक्शन में जरूर होते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस फिल्म में नहीं थे क्योंकि इस फिल्म में उनके सूटेबल कोई रोल ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे राजेंद्र कुमार और उनके बेटे कुमार गौरव भी। सो राजेंद्र कुमार का ये सेट रूल था कि वो अपने प्रोडक्शन वाली फिल्मों में ना कहीं जरूर आते थे, लेकिन इस फिल्म में नहीं आए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर बना लें, लेकिन नहीं सूट बैठा। सो उनके बेटे कुमार गौरव ने भी कहा कि नहीं नहीं, ये फिल्म आपके बिना ही बन जाएगी। पुरानी जीन्स पे नाम फिल्म की बातें हो रही हैं, सो डोंट यू गो एनीवेयर। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आर जे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स RJSHREYA विद लव। गुड नाइट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Touch. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti-chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट,
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: तो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हर त्योहार के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी लाइफ विजडम भी छुपी होती है? आइए ऐसे ही एक त्योहार के जरिए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बचपन में जब मैं चित्रहार देखता था तो उसमें एक जन्माष्टमी के आसपास ना एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, खुद्दार फिल्म का 1982, अमिताभ बच्चन का गाना था कि मच गया शोर सारी नगरी रे। ये दही हांडी के सेलिब्रेशन पे एक गाना था और मेरे लिए ना ये सिर्फ एक खेल जैसा था। बहुत बाद में मुझे किसी ने बताया कि दरअसल ये सिर्फ खेल नहीं है, दही हांडी जो सेलिब्रेशन है वो एक्चुअली बहुत कुछ सिखाता है। जन्माष्टमी पे जो किया जाता है वो टीम वर्क सिखाता है, वो फाउंडेशन के बारे में सिखाता है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में सिखाता है और वो डिटर्मिनेशन के बारे में सिखाता है। क्योंकि जब तक एक दूसरे को आप ट्रस्ट नहीं करते, आप डिटर्मिंड नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और आप टीम वर्क से नहीं करते, आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते और वो मटकी जो वो फोड़ नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है, जीवन हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, घर हो, परिवार हो, जो भी हो, हम क्या है, सब मटकी फोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो चुपचाप काम करना बिना किसी क्रेडिट के, इसको जो है हम महत्व नहीं देते, हम फाउंडेशन नहीं बनना चाहते।
4: पहले तो वो जो मटकी फोड़ना है वो क्या फोड़ना है, वो कोई मटकी फोड़ने की बात नहीं थी। मटकी फोड़ना माना अपने ईगो को फोड़ना। वो सिंबॉलिक है एक्चुअली मटकी फोड़ना। और ईगो को खत्म करने के लिए जो आपने वो सारी बातें कही
3: जी,
4: कि उसके लिए ट्रस्ट भी चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी चाहिए, फाउंडेशन भी चाहिए, जब तक वो सब कुछ नहीं होगा तो ईगो खत्म नहीं हो सकती। तो वो मटकी फोड़ना एक रियलाइजेशन है कि मैंने सिर्फ वो मटकी फोड़ी कि मैंने अपने ईगो को भी तोड़ा।
3: अच्छा,
4: और ईगो की निशानी क्या है? क्लैरिटी। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स।
3: वाह क्या बात।
4: जहाँ अभिमान है वहाँ जल्दी जल्दी अपमान महसूस होता है। तो ये रियलाइजेशन है कि अगर मुझे अपमान महसूस होता है तो मुझे उस चीज का अभिमान है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के भी हम अपनी बात मजबूती और प्यार से रख सकते हैं? आइए इसका तरीका जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी क्या होता है, जब आप एक रूम में होते हैं जहाँ शायद आप में ये पर्सपेक्टिव है और आप कहते हैं देखो मैं झगड़ा करने के मकसद से नहीं आया हूँ, एक डायलॉग डिस्कशन करते हैं, लेकिन सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, तो आपको लगता है यार अगर मैं यहाँ पे चुप रहा और मैंने कहा ठीक है भाई जैसा आप कहें, हो तो जाएगी बात, लेकिन शायद बात सही नहीं हो, कहीं ना कहीं जो हावी है वो उसको अपनी दिशा में ले जाता है और वो जरूरी नहीं कि सही डिसीजन हो। ऐसे केस में क्या करना चाहिए?
4: सी, अगर कोई हावी हो रहा है वो उसका रोल है, आपको क्या करना है, ऐसा नहीं आप चुप हो जाएं, कभी भी चुप होने की बात नहीं है, लेकिन सत्यता सभ्यता से ही रखनी चाहिए, अपनी बात डिग्निटी ग्रेस से रखनी चाहिए।
3: तो ये जरूरी है कि चुप ना रहें, लेकिन अपनी डिग्निटी से
4: अपनी बात जरूर कहें। देखो, सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, सच को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है।
3: सही बात।
4: तो आप अपनी बात कहें, उसके बाद उनको डिसाइड करने दें उनको क्या करना है। और इसीलिए आई रियली लाइक दिस लाइन दैट आई एक्सेप्ट यू बट आई डोंट अग्री विद यू।
3: अरे वाह, क्या बात है,
4: दोनों में बहुत फर्क है।
3: वी
4: अग्री टू डिसएग्री, आई एक्सेप्ट यू, मैंने एज अ पर्सन अगर ये आपका नजरिया है और आप ऐसा करना चाहते हैं और आप इस तरह से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके आई एक्सेप्ट यू बट आई डोंट अग्री विद यू, मैं शायद आपकी जगह पर होऊंगा तो मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरी राय नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है, पर अगर आपको ठीक लगता है तो मैं आपके बारे में गलत क्यों सोचूं, आपको हक है अपना जीवन जीने का, सो आई एक्सेप्ट यू बट मे बी आई डोंट अग्री विद यू, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता है।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आर्ग्यूमेंट्स की जगह ओपन डायलॉग को अपनाकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरी दो बहनें हैं और कजन्स बहुत सारी हैं, हम एक दूसरे को भाई बहनी कहते हैं, ऑलमोस्ट इतने क्लोज हैं कि ऐसा लगता है कि वी आर वन बिग फैमिली। और हम सब बहुत अलग हैं एक दूसरे से, और ज्यादातर राखी का दिन छोड़ के ज्यादातर हमारे बीच में घमासान युद्ध होता है घर पे। इतनी सारी ओपिनियंस होती हैं, बट देर आर दीज स्मॉल लिटिल फेस्टिवल्स, वो दिवाली हो, राखी हो, या और कोई भी सेलिब्रेशन हो, जहाँ हम सब एक साथ बैठ के खाने के टेबल पे बात करते हैं, और जो वो राखी का वो एक तरह से पवित्र बंधन होता है ना, तब हम रियलाइज करते हैं कि हम चाहे कितने ही डिफरेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बांधता है। और वो शायद तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हम अलग हैं लेकिन हम पेड़ जो है वो तो एक ही है, एक ही जगह से निकल के आए हैं। और ये बहुत जरूरी है समझना कि हम डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी ठीक है।
4: मतलब ठीक क्या है, ये बहुत नेचुरल है। घमासान युद्ध के जो आपने बात करी, वो घमासान युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिफरेंट हैं लेकिन जो आपको ठीक लगता है आप उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: हम सभी कोशिश करते हैं,
4: तो वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। आप अगली बार टेबल पर कोशिश करें डिस्कशन की और डायलॉग की। जब हम डिस्कशन और डायलॉग करते हैं ना, सो वी आर नॉट, हम उस इंटेंट से नहीं बैठते कि मुझे अपने को प्रूव करना है। हम उस इंटेंट से बैठते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, पर हो सकता है कि शायद उनका ओपिनियन अलग भी हो और मेरे से बेहतर भी हो,
3: शायद बेहतर हो।
4: हो सकता है कि कोई दो बात मैं उनसे सीख लूं। आर्ग्यूमेंट में हमेशा कहते हैं 1+1=0, डिस्कशन में कहते हैं 1+1=2, लेकिन एक डायलॉग, एवरीबडी शेयरिंग देयर ओपिनियन, देयर पर्सपेक्टिव, उसमें कहते हैं 1+1=3, 5 भी हो सकता है। मतलब यू कैन जस्ट ग्रो 11। सो द होल आइडिया इज कि जब हम बैठे हैं हम अपने पर्सपेक्टिव से अटैच नहीं होने चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रक्षाबंधन के बदलते दौर में क्या इस त्योहार के मायने भी बदल गए हैं, आगे जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, रक्षाबंधन बहुत खूबसूरत त्योहार है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम घरों के अंदर तो थ्रेड बांध रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं तो हम सोसाइटी को जो वो श्रेड कर रहे हैं, पूरे वो जो फैब्रिक है उसको श्रेड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कहीं ना कहीं हमने इसको शायद कमर्शलाइज कर दिया है, चलिए वो अपनी अपनी राय है, ओपिनियन है, तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वो धागा बांध रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग बहुत डिवाइडेड होते हैं। आज हमारे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, हमारे बहुत मतभेद हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सेट्रा। और राखी के मौके पे भी कई बार देखता हूँ जब फैमिलीज एक साथ आती हैं, तो वहाँ पे भी डाइनिंग हॉल पर जो है वो इस तरह से बातें हो रही होती है कि लगता है कि किसी भी मोमेंट अभी झगड़ा होने वाला है। सो आई वांट टू आस्क
5: यू, आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी, रेडियो मिर्च।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैं से हम तक का सफर हमारी जिंदगी और रिश्तों को कैसे बदल सकता है, आइए इस नए नजरिए को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हम ना दीवारों पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन कुदरत जो है वो हमें ब्रिजेस दिखाता है हमेशा। यू नो, इत्तेफाकन है कि इस साल मिलादुन नबी जो है और ओनम जो है वो या तो एक ही दिन होगा या आसपास अगले दिन होगा। और मैं सोच रहा था कि जब ऊपर वाला खुद कैलेंडर पर इन दोनों ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स को एक साथ डाल रहा है, तो इंसान कौन होता है कम्युनिटी को अलग करने वाला। हम ज्यादातर कम्युनिटीज में जब रहते हैं ना, तो अस वर्सेस देम वाली फीलिंग होती है, आइसोलेशन वाली फीलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं ना कहीं रिलीजन से या कास्ट से या बहुत सारे मुद्दों से अलग अलग रहते हैं। मिलादुन नबी इज द बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट, और ओनम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। तो मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता था कि ये अस वर्सेस देम वाली आइसोलेशन वाली फीलिंग कम्युनिटीज पर इतनी हावी क्यों है?
4: क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन है। जो ये सिंपल से आंसर है ना कि मैं कौन हूँ
3: जी,
4: और इसकी क्लैरिटी न होने के कारण इतना कॉन्फ्लिक्ट है
3: जी।
4: एक्चुअली हम किसी भी कास्ट रिलीजन कम्युनिटी से बाद में हम उससे जुड़ते हैं, लेकिन पहले हम एक बीइंग है
3: जी।
4: सब एक बीइंग है, ब्यूटीफुल बीइंग है, सोल है। फिर हम अक्वायर करते हैं, हम चाहे बॉडी अक्वायर करते हैं, फिर जेंडर अक्वायर करते हैं, फिर रिलीजन अक्वायर करते हैं, कास्ट कलर अक्वायर करते हैं, और थोड़े समय के बाद हमें लगने लगता है कि जो हमने अक्वायर किया है वो मैं हूँ।
3: सही बात,
4: मुझे ये भूल जाता है कि ये मैंने अक्वायर किया है, और जो मैंने अक्वायर किया है वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, और जो मेरी आइडेंटिटी है उससे हम अटैच हो जाते हैं। फिर जिस चीज से हम अटैच होते हैं हमें लगता है यही राइट है, और फिर हमें लगता है अगर ये राइट है तो दूसरा रॉन्ग है। वहां से ये फ्रेगमेंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर आप सिर्फ ये रिमाइंडर अपने को दें कि मैं भी सोल हूँ, ये भी सोल है, मैंने एक रिलीजन अक्वायर किया, उसने दूसरा रिलीजन अक्वायर किया, लेकिन दोनों रिलीजन सिखा क्या रहे?
3: पीस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
6: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
6: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस, जिस पर सब करे भरोसा।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिल्म मैं सुंदर हूँ से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन सा गहरा लेसन सीख सकते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कोई भी रिलीजन फॉलो कर ले, लेकिन अगर आप उस रिलीजन की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो सामने वाला किसी भी रिलीजन का होगा, लेकिन आपको उसके प्रति जो भाईचारा है, लव है, पीस है, वो आएगा। लेकिन अगर आपने रिलीजन में क्या लिखा है उसको फॉलो नहीं किया तो वो मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है, फिर वो झगड़े के अंदर बदल जाता है एंड इट कुड लीड टू अ वॉर ऑल्सो। सिर्फ इतनी सी भूल, इसलिए वो कहते थे ना, ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, और अगर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ तो सब कुछ जान लिया, तो सारा ही कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। और जब आप इक्वालिटी की बात करें, वो इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने को सोल नहीं देखते और दूसरे को सोल ब्रदर के रूप में नहीं देखते।
4: क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने दो फिल्मों की मुझे याद दिला दी, एक है मैं आजाद हूँ जो बच्चन साहब ने प्ले किया था और इंस्पायर्ड बाय फिल्म कॉल्ड मीट जॉन डो, और दूसरी फिल्म है मैं सुंदर हूँ। तो अगर हम अपने आप को सिर्फ ये बोलें कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, जैसे आप कई बार बोलते हैं, मैं सोल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं आजाद हूँ, आई थिंक विल बी गुड, राइट?
3: ये हमारा एक्चुअली स्वधर्म है, वो रिलीजन हम अक्वायर करते हैं, लेकिन जो सोल का रिलीजन क्या है वो यही है। जैसे हम कई बार कहते हैं सतो प्रधान आत्मा, तो वो शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये हम हैं। चाहे हमने कोई भी जेंडर, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, ये हमारा स्वधर्म है, इट इज द रिलीजन ऑफ द सोल, और यही हम सबको चाहिए। बट एक्चुअली ये हमें चाहिए नहीं है, इसकी अवेयरनेस चाहिए कि ये हम हैं और ये हमें रेडिएट करना है।
4: सही बात।
3: और बाकी जो हमने अक्वायर किया था वो रिमाइंडर देने के लिए ही था कि आप ये हैं और आपको ये बाकी सबके साथ रेडिएट करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं लेबल्स में इतना फंस जाते हैं, और लेबल से जो जनरेट होती है वो है ईगो, ईगो कॉन्शियसनेस। तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, दो ईगो आपस में टकराती है, और ईगो हमेशा यही कहती है कि मैं राइट हूं तो आप रॉन्ग है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Anishk, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Rang Reza. Rang Reza.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The Shea, only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल है मृणाली जी का। वो लिखती है कि जब जिंदगी में कोई सहारा ना हो, कर्जों का बोझ हो और पुरानी एडिक्शंस पहले से भी ज्यादा ताकत से वापस आ जाएं, तो खुद को कैसे संभालें? और अगर फिर टूटना ही था तो ठीक होने का मतलब क्या था?
3: टूटना क्यों है? टूटता तो वो है जो हार मान चुका है।
2: हाँ,
3: जो वो बातें कह रहे हैं जीवन के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं।
2: हाँ,
3: तो जीवन के चैलेंजेस तो सबके जीवन में आते हैं।
2: बिल्कुल,
3: किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी का बीमारी, किसी का धन का पेपर। लेकिन टूटने का मतलब है आप अंदर टूट गए, आपने गिव अप कर दिया। आप गिरे हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गिरकर उठे नहीं है वो बड़ी बात है।
2: सही बात।
3: तो अगर वो टूटने की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो अपनी ताकत, जिसको हम विल पावर कहते हैं
2: जी।
3: लेकिन कभी कभी अगर विल पावर भी काम नहीं कर रही हो तो फिर चाहिए परमात्मा की ताकत
2: जी।
3: और इसीलिए जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था एक कहानी जिसमें वो कहते हैं कि एक बारी मीरा को बहुत ही गरम गरम दूध दिया गया।
2: अच्छा।
3: और कहते उसको गरम नहीं फील हुआ, लेकिन कृष्ण के मुंह में छाले आ गए।
2: अच्छा।
3: उस कहानी का जो राज ये होता था कि जिनका भगवान से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर उनके जीवन में कोई चैलेंजेस भी आते हैं तो उनको सफरिंग नहीं एक्सपीरियंस होती है। बात आई है, बात का सामना आपको करना पड़ेगा, तो वो बात आई है लेकिन सफरिंग भोगना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपका साथी है, सर्वशक्तिवान आपका साथी है। तो आप उसको इनवाइट करें, उसके साथ रिश्ता जोड़ें, अपना बोझ उसको सौंपे, खुद हल्के हो। बोझ सोच का होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कर्ज कैसे उठेगा। बोझ उसको सौंप करके मन को हल्का करें, मन को परमात्मा में लगाएं, उससे वो शक्ति लें, और फिर जो आगे करना है वो तो करना ही है।
2: वेरी नाइस।
3: सो व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव, वो सोच करके करें। लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति नहीं आगे बढ़ सकता है ना।
2: वाह, क्या बात है मृणाली जी। आई होप आपको जवाब मिल गया हो। और अगर एक और तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेने ब्राउन की बहुत कमाल की किताब है, राइजिंग स्ट्रॉन्ग उसका नाम है। अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा, उससे भी शायद आपको थोड़ी मदद मिले।
3: परमात्मा कई बार कहता है हिम्मत का एक कदम आपका,
2: 100 कदम हमारा,
3: 100 कदम मदद उसके, लेकिन हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम somebody was sharing कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है और यहाँ पर तुम्हारी चाय हो, कॉफी हो, ब्रेकफास्ट हो, सब कुछ गर्मा गर्म सर्व होंगी क्योंकि मिर्ची इज हॉट। तुम्हारे मॉर्निंग कम्यूट से लेकर तुम्हारी ऑफिस मीटिंग से लेकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाने का स्टाइल, तुम्हारा सोने का स्टाइल, तुम्हारा सुबह सुबह उठने का स्टाइल और साथ साथ में तुम्हारा मिर्ची सुनने का स्टाइल, बिकॉज मिर्ची इज हॉट। और आज का फंडा भी बिल्कुल सिंपल है। आज के दिन हम करेंगे थोड़ी सी गॉसिप, बॉलीवुड की बातें, मस्ती, ढेर सारा नॉस्टैल्जिया और वही मॉर्निंग मिर्चीदार एनर्जी तुमको मिलने वाले थ्रू आउट। अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ। नाम है प्रिसिला, मेरे शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा इंस्टाग्राम और एक्स पर नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। फॉलो कर लेना और साथ में मुझे तुम मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बसा जा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट्स रिवाइंड कि आज के दिन पुराने जमाने में क्या हुआ था। स्टार्टिंग विद 1934, अल्कट्राज फेडरल पेनिटेंशरी रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सिविलियन प्रिजनर। हाँ, ये वही अल्कट्राज है, अमेरिका की द इन फेमस आइलैंड प्रिजन, जहाँ से कोई भाग नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद सबसे फेमस प्रिजन ब्रेक यहीं से हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, एक्ट्रेस हेडी लमार एंड कंपोजर जॉर्ज एंटाइल गॉट अ पेटेंट फॉर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी। ये कैसा इन्वेंशन था दैट लेटर बिकेम फाउंडेशनल टू मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन। सो टेक्निकली हर बार तुम्हारा वाईफाई जब काम करता है, यू हैव हिस्ट्री एंड देम टू थैंक। 1965 में द वॉच रायट बिगैन इन लॉस एंजलिस, लीडिंग टू अ सिक्स डे ऑफ मेजर सिविल अनरेस्ट। 1972 में द लास्ट यूएस ग्राउंड कॉम्बैट यूनिट लेफ्ट साउथ वियतनाम। 1973 में डीजे कूल हर्क होस्टेड अ बैक टू स्कूल पार्टी इन द ब्रॉन्क्स। ये जैम वाइडली कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडेशनल मोमेंट्स इन द बर्थ ऑफ हिप हॉप कल्चर। देन कम्स 1992, द मॉल ऑफ अमेरिका ओपन्ड इन मिनेसोटा एज द लार्जेस्ट इंडोर शॉपिंग मॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड फाइनली 2003 में नेटो टुक कमांड ऑफ द इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स इन अफगानिस्तान। दैट्स इट फॉर हिस्ट्री का राउंड अप। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। वांट टू नो मी मोर, इंस्टा और एक्स पर मुझसे बात कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
8: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट। Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
17: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो hips lips eyes thighs sab gazab sab gazab sab

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल.
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 70 ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 70

0: शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted platform to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
3: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब टाइम है मौसम का हालचाल पता करने का. राइट नाउ वी सिटिंग एट 72 डिग्रीज फारेनहाइट. स्काइज जो है वो थोड़ी सी क्लाउडी है, लेकिन इट्स फीलिंग लाइक 73 डिग्रीज फारेनहाइट. बट लिसन, शाम को अराउंड 5 बजे के आसपास रेन इज एक्सपेक्टेड. सो अगर तुम उस टाइम घर पहुंचने वाले होगे, निकल रहे होगे घर के लिए, वर्क खत्म कर रहे होगे या फिर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आज के दिन झमाझम बरसात होने वाली है. अराउंड 16 मिलीमीटर की बरसात फोरकास्ट में है. आज के टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 70-87 डिग्रीज फारेनहाइट है, लेकिन फील होगा 72 से लेकर 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक. और ये फील लाइक इस पर डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिटी, सनलाइट और विंड जो है ये मिलकर एक क्या मिश्रण बनाते हैं, और उस मिश्रण को वेदर बोला जाएगा आज के दिन. गुड न्यूज आई हैव दो, यस्टरडे के कंपेरिजन में आज का टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, इट्स प्रीटी सिमिलर. सो कोई मेजर चेंज नहीं है टेम्परेचर में. आज के दिन भी बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर जाना, क्योंकि सुबह से शाम तक में वेदर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है. एंड रेन वाइज लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था, और जैसे मैंने बताया अगले 24 आवर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 16 मिलीमीटर्स ऑफ रेन. सो कॉफी, चाय, सनग्लासेस, सनब्लॉक, SPF 50++ के साथ ये सब कुछ साथ में ले जाना, और साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोब एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA. फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस. विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और शॉप nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
7: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस. आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
14: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन.
15: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted platform to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप पता करते हैं हमारे गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ऑलमोस्ट टचिंग $4,400 $4,390 पर ट्राई ऑन्स इस समय गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर के प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड पर है. इससे पहले गोल्ड एंड सिल्वर वापिस एग्रेसिव अपवर्ड ट्रेंड ले RajJewels.com के साथ PAM certified gold and silver bars, 1 ounce, 100 gram, 10 ounces, kilo bars, investment bar. आइए RajJewels.com के साथ responsibly gold में invest करें. Thank you. Happy morning to.
1: And there you have it. Gold का latest rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. Connect करो मुझसे Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम टू चेक व्हाट द यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज फोकस घर और फैमिली पर रहेगा। कोई पुराना डोमेस्टिक इशू है, बात करके निपटा लो, ग्रुप चैट में पैराग्राफ लिखकर नहीं। फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपना चार्म फुल वॉल्यूम पर रखो, मीटिंग्स हो या फिर पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हो, अपनी बात में क्लैरिटी रखो, सिबलिंग्स या नेबर्स के साथ स्वीटनेस मेंटेन करो, देसी मोहल्ला डिप्लोमेसी इज रियल। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 3। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मनी मैटर्स आर टेकिंग सेंटर स्टेज, बजट चेक करो, सेविंग्स का प्लान बनाओ, बेसिकली बैंक अकाउंट को भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो दे दो उसे, एंड आज मोटिवेशन मिल सकता है टू फाइनली fix that one health habit you've been ignoring. Lucky color is cobalt blue, lucky number is 8. कैंसर यानी कर्क राशि, मून तुम्हारी साइन में है, सो इंट्यूशन एंड कॉन्फिडेंस आर गेटिंग अ लिटिल अपग्रेड, सेल्फ केयर करो एंड ट्रस्ट दैट गट फीलिंग। पर्सनल ग्रोथ के लिए आज लकी डे है, अंदर की आवाज को एयरप्लेन मोड पर मत डालना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज थोड़ा सा स्लो डाउन करो चैंप, सोशल प्लान से ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो, रिचार्ज करो, वर्क पे पेशेंस रखो, और बोर्डम में ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड को मेडिटेशन समझो, चेकआउट को नहीं। लकी कलर इज बर्न्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, फ्रेंड्स नेटवर्किंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर लुकिंग गुड, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन में जंप इन करो, बस जॉइंट फाइनेंसेस में रिकॉर्ड्स क्रिस्टल क्लियर रखो, फ्रेंडशिप ब्यूटीफुल है, अकाउंटिंग स्प्रेडशीट उससे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर एंड नंबर इज 4। एंड दिस इज राशि जोन पार्ट 1, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 mirchi, that's 9033 647244। Filhal stay tuned and stay hot।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings ka Rashi Zone Part 2. Main hu Priscilla tumhare saath mein.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra yani ki tula rashi. Career spotlight is on. Leadership dikhane ka time aa chuka hai. So take charge of the important project. Boss se honest communication rakho. Mind reading abhi bhi LinkedIn skill nahi bani hai. Lucky color is royal blue. Lucky number is 1. Scorpio yani ki vrishchik rashi. Adventure, learning and travel vibes are strong. Naya subject explore karo. Class ko join karo. Ya phir future trip plan karo. Obstacles aaye to fearlessly face them. Tum Scorpio ho. Google Maps भी तुमसे डायरेक्शन मांगता है. लकी कलर इज क्रिम्सन. लकी नंबर इज 7. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. आज डीप कॉन्वर्सेशन और शेयर्ड फाइनेंसेस का टाइम है. टैक्सेस, जॉइंट मनी या फिर कोई इमोशनल इशू पेंडिंग है तो फेस इट. पुरानी रिस्ट्रिक्टिव हैबिट्स को ब्रेक करने का करेज आ गया है तुम्हें. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 5. केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. पार्टनरशिप्स, बिजनेस एंड रोमांस टेक प्रायोरिटी. किसी स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी वन ऑन वन टाइम स्पेंड करो. पार्टनरशिप्स, बिजनेस एंड रोमांस टेक प्रायोरिटी. किसी स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी वन ऑन वन टाइम स्पेंड करो. और ये याद रखो, हर प्रॉब्लम

couple, lucky number is 10. And last but not the least, Pisces, yani ki mean rashi. Tumhari life mein creativity, romance and pure joy aa chuka hai. Hobby ke liye time nikalo, kuch artistic karo, flirt karo. Basically life ko sirf excel sheet mat banao yaar. Kids aur pets ke saath thoda sa emotional time aaj spend karo. It will heal you. Not that you need healing, but it will be good for you emotionally. Lucky color is sea foam green, lucky number is 12. And that's it for Mirchi Rashi's own part 2. Stars अपनी जगह है. रिमेम्बर स्टीयरिंग व्हील अभी भी तुम्हारे हाथ में है. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा इंस्टा और एक्स आईडी है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो. 9033 मिर्ची इज माई नंबर. 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की

0: Sherwanis. Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
3: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना। मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोव एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA। फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और शॉप नेशन at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इनसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપ યજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
9: તેરા ક્યા હોગા કાલિયા?
10: સરદાર, મેં આપકા નમક ખાયા સરદાર.
9: અબ
11: मिर्ची का
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल, क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have three life cycles
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म के थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और अधिकतना गाना वहीं से शुरू होता है, राइट। एंड अब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है। एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
5: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
6: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
3: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
7: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डियर आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: Mirchi 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा. पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ, हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज Mirchi Sara. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे. सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून टू Mirchi, इट्स हॉट.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
4: It's hot.

अच्छा, दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर हो देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था. क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाएं. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार, मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: ओह नो,
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब। इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर देन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मजेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वांटेड एवरीथिंग परफेक्ट, ही वांटेड एवरीथिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 1:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
3: Hi, my name is Peter Parker.
4: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
5: Spiders have free life cycle.
4: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
2: मिर्ची बायोस्कोप
0: साथ जीतूराज।
2: जीतूराज
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
15: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक हो करके, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले, पता है, हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफकोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना, देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफकोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं, तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने, इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
5: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
4: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शैलेंद्र जी इस बात से नाराज कम हर्ट ज्यादा थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है। वेल द फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद जो कि कलर में थी। अब इस फिल्म के लिए क्योंकि विजय आनंद और देवानंद दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी SD बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पे हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले ये दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट बिकॉज वो कहते हैं ना वो ईगो क्लैश हो गया कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे वाज सो हैप्पी। वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची का।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
0: पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोड एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA। फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी इंडियन फिल्म थी टू गेट इनविटेशन फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल, तो क्या आपको पता होगा? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। इट वॉज नन अदर देन देव साहब की फिल्म गाइड। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर टू बी इन्वाइटेड बाई द कांस फिल्म फेस्टिवल कमिटी। और कांस क्लासिक में इस फिल्म को, यू नो, अ सेक्शन ऑफ द फिल्म को दिखाया भी गया था। देवानंद एक्चुअली वॉक द रेड कार्पेट फॉर दिस इवेंट, और वो भी, यू नो, उनके साथ

कौन थे, इंडियन एम्बेसडर उस टाइम के टू फ्रांस. सो इट वाज अ ह्यूज थिंग एंड अ लॉट ऑफ टेलीविजन चैनल्स, एंड लॉट ऑफ टेलीविजन चैनल्स तो नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन और सब ने ना, न्यूज ने, सब ने इस बात को कवर किया था. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज ना देव साहब की फिल्म गाइड, जो कि उनकी पहली कलर फिल्म भी थी, बस उसी की बातें चल रही हैं, उसी के गाने हो रहे हैं, और आप और मैं मिल करके रिलैक्स कर रहे हैं. सो डोंट यू गो एनीवेयर.

सिर्फ ऐसे गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स दी ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में, गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आर डी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज़ है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब विजय आनंद और देव आनंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी. सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था. सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था. एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो रिवर कावेरी के बैंक पे जा कर के बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड. इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने, दी आनंद ब्रदर्स विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया. लेकिन आपको क्या लगता है ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी. श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
4: Oh no!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
13: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री इन्वाइटेड थी फॉर द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म, लेकिन किसी ने भी आकर के ना विजय आनंद को मूवी देखने के बाद कंग्रेचुलेट नहीं किया. इट लेफ्ट हिम हार्ट ब्रोकन. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ. लोग ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफबीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी. बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड. पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया. कम बैक राइट हियर.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची का।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या यह मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
12: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes. Comes the naan, the same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes, and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
18: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशंस बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार कितने सारे गाने बनते हैं, कितने सारे एल्बम्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा एल्बम आ जाता है ना जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता है और आज भी उतना ही टाइमलेस है जितना तब जब रिलीज हुआ था तब था। और आज जिस एल्बम की बात हो रही है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार। जी हाँ, क्योंकि इस एल्बम ने एक ऐसा गाना दिया था हमें जो सिर्फ गाना नहीं था, एक रेबेलियन बन गया था। रॉक स्टार का सड्डा हक बना था हर यूथ का एक्सप्रेशन, क्योंकि इम्तियाज अली ने ना तब यार रहमान से कहा था कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जॉर्डन की आग को जला दे, और मोहित चौहान ने इसमें अपनी रॉक वॉइस का मैजिक छोड़ा था और रणबीर कपूर की जो रॉ एनर्जी थी ना इसने इस गाने को कल्ट बना दिया था। वैसे तो यार ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि अंदर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब मुझे भी कुछ कहना है, अपने दिल की भड़ास बाहर आ जाती है। तो अगर आपको भी ये गाना पसंद है और आपके भी दिल में इस गाने ने जगह बनाई है तो चलिए आज बजाते हैं सड्डा हक फ्रॉम द वन एंड ओनली एल्बम विच इज स्टिल टाइमलेस, रॉक स्टार बाय AR रहमान। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अदर एल्बम दैट यू एब्सोल्यूटली लव विच इज स्टिल टाइमलेस। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो फुल वॉल्यूम कीजिए क्योंकि सड़ा हक बचने ही वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैथनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Iselin
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
12: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब
13: तेरा क्या होगा कालिया
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
13: अब मिर्ची खा
15: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीजों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीजें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम @rjmirchisiddhi. और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot.
1: Oh, kudiyo, gudi.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रो भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन विमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। Eden Rope, a legacy of style. और दोस्तों, अगर आपकी पर्सनैलिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। DM me on Instagram @mirchisiddhi SIDDHI, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Isca bana, pusca bana, saca bana. Gambana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted platform to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
12: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
11: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey today. Tanishq, a Tata product.
14: Terms and conditions apply.
15: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
16: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी हम जिस चीज की तलाश बाहर करते हैं उसकी वैल्यू पहले से ही हमारे पास होती है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। वैसे ही घर भी कई लोगों के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, एक फाइनेंशियल असेट भी होता है। और उसकी ज़रूरत पड़ने पर उस एसेट को किस तरह से स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है, उसके भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल, ऐसे ऑप्शंस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसी के बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
3: Good evening, Mitchell. This is your friend Peach from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work. Hot and humid day and the U.S. markets dip as U.S.-Iran reach impasse, no changes in the mortgage rates. U.S. sales of existing homes fell to a three-month low as elevated prices and mortgage rates continue to weigh on the housing market. Mortgage rates can move from day to day and the rate you actually qualify for depends on several factors, including your credit profile, loan program, down payment, property type, and overall financial picture. One question I get all the time is, should I wait for rates to come down? And the honest answer is, there's no crystal ball. If you find the right home and the payment works comfortably within your budget, it can make sense to look at your options today rather than trying to perfectly time the market. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 5.99%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Two products, very, very popular now. Number one, investment property, 25% down payment. You can buy it under an LLC. And it is called the DSCR program. Second, we are doing closed-end second loans. If you already own a home and have equity, we are now lending you up to 90%. Of the value of the property. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
4: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
14: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बात हो रही है एक ऐसे टाइमलेस एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाता है, और वो जो टाइमलेस एल्बम है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार बाय AR रहमान। और यार उस एल्बम का एक ऐसा गाना है जो सिर्फ एक लॉस्ट सोल के लिए नहीं, लेकिन हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर को ढूंढ रहा है। इम्तियाज अली ने गाया हुआ नादान परिंदे घर आ जा, इस गाने को ना फिल्म का इमोशनल एंकर बनाया था। AR रहमान साहब ने इसमें सूफी और रॉक का एक ऐसा ब्लेंड दिया था कि ये जो गाना है जॉर्डन के सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मोहित चौहान की आवाज, उफ, एक दर्द जो सीधा दिल में घुस जाता है। तो यार ये गाना सुनते ही ना एक अजीब सा होम सिकनेस महसूस होता है, चाहे घर पास हो या दूर। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो चलिए आपके ही लिए आज प्ले कर रही हूँ नादान परिंदे घर आ जा। और मुझे जरूर बताना कि रॉक स्टार का ये गाना क्या आपका भी फेवरेट है। Tell me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. लेकिन अगर और भी कोई गाना आपका फेवरेट है फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार, जल्दी से मुझे इंस्टा कीजिए। और तब तक के लिए रॉकस्टार का नादान परिंदे घर आजा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
9: Listener MI, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाने वाला है। और आज का जो ये एल्बम है यार, ये अभी भी इतने सालों बाद भी टाइमलेस है। बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम के बारे में, कंपोज बाय AR रहमान। और इस एल्बम में तो यार वैसे तो सारे गाने अमेजिंग है, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जो सिर्फ सुकून ही नहीं देता, रूह तक को छू जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में शूट हुआ कुन फाया कुन, ये जो गाना है ना, असली कव्वाल के साथ रिकॉर्ड किया गया था। AR रहमान ने खुद कहा था कि ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ही डिवाइन है। और मोहित चौहान, AR रहमान और जावेद अली की ट्रिनिटी ने इस गाने को ना सोल थेरेपी बना दिया था। वैसे तो यार ये जो गाना है चल पड़ता है जब जिंदगी थोड़ी रुक जाए और हर बार दिल को हल्का कर जाता है। तो अगर आज की शाम दिल थोड़ा घबराया हुआ है या बस थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए ना, तो कुन फया कुन ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो सुन लेना, और मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की जो आपको टच करती है। टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और रॉक स्टार का आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए कुन फाया कुन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रंग रेजा, रंग रेजा।

0: तेरी हो मुझे पसंद किस तरह मैं की करूं।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हमारी बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल में ना एक अलग ही जगह कर देता है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही अमेजिंग है। रॉक स्टार एल्बम की बातें हो रही है, कंपोज बाय AR रहमान और आज की जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम अमित द्विवेदी जो कि रहते हैं एडिसन में और उनको फिर से उड़ चला जो कि रॉक स्टार का गाना है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाना सिर्फ एक ट्यून नहीं है, एक फ्लाइट है अपने ख्यालों की, अपने आजादी की और अपने सपनों की। और मेरा भी यही मानना है क्योंकि इम्तियाज अली के रॉकस्टार एल्बम का ये जो ट्रैक है, मोहित चौहान की मैजिकल आवाज और AR रहमान की एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन का एक बहुत ही रेयर जेम है। मतलब लिरिक्स इरशाद कामिल जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का ना खुला आसमान ही उन्होंने लिख दिया हो। मूवी में ये जब मोमेंट था जब जॉर्डन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर म्यूजिक और सफर की दुनिया में उड़ चले थे। और इसमें ना कोई फिक्स्ड बीट नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लो मेलोडी है गाना, बिल्कुल लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल। तो मेरे लिए फिर से उड़ चला एक ऐसा ट्रैक है जो बस कहीं पर भी आप सुन सकते हो, चाहे रोड ट्रिप में हो चाहे ट्रेन में हो, हेडफोन्स लगाते ही वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर देता है ये गाना। और अगर आपको भी यही लगता है तो चलिए आपको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अमित द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको भी अगर कोई ऐसा एल्बम पसंद है जिसके सारे गाने आपके दिल के बहुत ही करीब है तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI और तब तक के लिए रॉक स्टार का फिर से उठ चला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, sa cabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो
3: ना, आप मुझे क्या बताए? आप बतमी से बात मत करिए।
2: सबको लगा दूंगा लाइन में।
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient.
9: Very complex.
10: Clumsy.
11: Confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
14: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों देखिए, ट्यूसडे आ चुका है और ट्यूसडे पे एक टिप तो बनती है, ऐसी टिप जो आपकी इन्वेस्टमेंट में चार चांद लगा दे और सिर्फ चांद ही नहीं सोने पे सुहागा भी बना दे। तो चलिए बुलाते हैं आज की इस खास सीरीज में, गोल्ड डिकोडर सीरीज में, हमारे गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम में।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। सिद्धि जी, पहले गोल्ड का प्राइस शेयर कर दूं
0: जी। बिल्कुल,
1: आपको बता दूं कि गोल्ड पिछले हफ्ते से 10% हायर चला गया। बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये मैं बोलता हूँ ना, हर चीज के अंदर अगर अच्छाई देखी जाए तो आज सोने का जो भाव है $4,370 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। और आज सुबह गोल्ड 4435 4435 की हाई टच कर चुका है, तो करेक्शन के साथ $4,370 हाई ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते से गोल्ड ऑलरेडी 10% हायर चला गया है। सो सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ अब आपके सवाल के लिए।
0: देखिए, अभी ऐसे कई सारे लोग हैं, आपने तो पहले ही गोल्ड की रेट सुनाकर हमें धक्का दे दिया है कि यार, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोकेस्टिनेट लास्ट वीक किया था वो इस वीक थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी 10% रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो इस खास मंगलवार की जो शाम है, ट्यूजडे की शाम है, हमें चाहिए आपसे ट्यूजडे टिप, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल बाय करेंगे, कल शायद रेट कम हो जाए। लेकिन उसके ही अपोजिट सोचते हुए हमें ये बताइए कि उन लोगों का क्या, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, या उनके लिए क्या टिप हो सकती है ऐसे मार्केट में?
1: देखिए, पहले तो आपको बताऊं, मैं और सिद्धि जी रोज आपको एवरीडे अपडेट करते हैं। जब गोल्ड $4,050 या $3,980 के मार्क पे गया था, हम आपको रोज रिक्वेस्ट करते थे कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी सोना खरीदें। लेकिन जो लेट अतीत दोस्त हमारे सोचते रह गए कि गोल्ड में खरीदना है और समय नहीं निकाल पाए, और गोल्ड आज 10% हायर के साथ $4,370 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। मेरी एक सिद्धि जी बहुत अच्छी सलाह है कि हमारे लॉकर्स में ना पुराना सोना पड़ा हुआ है। नई जनरेशन, जेंजी, मिलेनियल्स, किसी को भी 22 कैरेट के पुराने गहने जो आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, कहीं से भी खरीदे हो, आप उसको आज सोने के बढ़े हुए भाव का फायदा ले सकते हैं। उसको आज के गोल्ड प्राइस के हिसाब से, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के हिसाब से, जैसे आज गोल्ड का प्राइस अबाउट $128 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस में आप अपना पुराना गोल्ड सेल कर सकते हैं और एक्सचेंज में ले सकते हैं नए डिजाइन के गहने, चाहे वो खूबसूरत सा प्यारा सा मंगलसूत्र हो, पोलकी के नेकलेस हो, डायमंड की क्लस्टर बैंगल्स हो, या GI सर्टिफाइड सॉलिटेयर। सिद्धि जी, टिप यही है कि उन लॉकर्स को किराया हर महीने देके उस पुराने सोने को संभाल के रख के कुछ फायदा नहीं है, जिनको आप यूज नहीं करते हो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज नहीं करेगी। वो मोस्ट ऑफ दी न्यूअर जनरेशन जो अमेरिका में पल रही है, बढ़ रही है, उनको शायद हमारे 22 कैरेट सोने की अहमियत भी नहीं पता होती, और किसी अमेरिकन स्टोर पे अगर वो जाके उसकी वैल्यूएशन कराते हैं या पॉइंट शॉप्स में लेके जाते हैं, हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा है कि उनको आधी वैल्यू भी ऑफर नहीं होती है। सो राज ज्वेल्स अपने रहते हुए कैरेटोमीटर के साथ गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट कराएं, आज के सोने के भाव के पैसे इवैल्यूएट कराएं, उसकी रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू में GI सर्टिफाइड सॉलिटेयर्स, डायमंड की बैंगल्स, डायमंड के नेकलेसेस, या वो एक्सचेंज में गोल्ड बार्स भी आप घर ले जा सकते हैं राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करते हुए। सो सिद्धि जी, टिप यही है कि जब लोवेस्ट में आप खरीद नहीं सके तो हाईएस्ट में सेल नहीं कर सकते, तो आपके पास जो एटलीस्ट पुराना गोल्ड पड़ा है, पुरानी ज्वेलरी पड़ी है, उसको आए राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के साथ टेस्ट करें अपने सामने और एक्सचेंज वैल्यू में खूबसूरत गहने घर लेके जाएं।
0: क्या बात है बॉबी जी, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, यही है आज की ट्यूसडे टिप हमारे खास गोल्ड डिकोडर सीरीज में, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ विद बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो आज की टिप तो यही है कि आज के जो बढ़े हुए गोल्ड के रेट है उसका फायदा लीजिए, एक्सचेंज वैल्यू समझिए और राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर में अपना सोना आके जांच कीजिए। आज ही विजिट कीजिए RajJewels.com या फिर राज ज्वेल्स स्टोर ऑन द ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स Hey, hey, hey.

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
10: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब मिर्ची खा.
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
19: 6:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
20: Sham Shardar. Let's do not donkey, have a funky time.
21: एक ऐसा एल्बम जिसके हर एक गाने ने दिल में अलग ही जगह कर दी है. शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत ही खूबसूरत है. और आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दैट एल्बम, वो आज मैं प्ले करने वाली हूँ. जी हाँ, बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम की, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान. और ये जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम मोहिनी सांगले, हु इज फ्रॉम एडिसन. और मोहिनी कहती है कि यार इस एल्बम एल्बम का तुम हो जो ये गाना है यार, एक ऐसा रोमांटिक गाना है ना जो प्यार भी याद दिलाता है और इसकी खुशबू भी ले आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब प्यार की यादें इसे दिल में जगह कर देती है, घर कर देती है ना, तब ये गाना याद आता है। और तुम हो को सुनते ही ना रणबीर और नरगिस की वो साइलेंट केमिस्ट्री याद आ जाती है। इरशाद कामिल के लिरिक्स द अल्ट्रा पर्सनल, जैसे किसी डायरी से निकले हो। और ए आर रहमान ने इसमें मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की डुएट फील यूज करके यार ये गाना बोथ लॉन्गिंग और लव के लिए बना दिया। तो चलिए ये गाना चलाते हैं आज स्पेशली मोहिनी जी के लिए, जिनकी यार पुरानी यादें इस गाने से ताजा हो चुकी है। अगर आपकी भी हुई है तो जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर ऐसा भी कोई एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उस एल्बम के बारे में जरूर बताना, उसके हर एक गाने हम यहीं पे प्ले करेंगे। और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
7: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
12: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. हर ड्राइव बनेगी यादगार।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है। फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ। ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना, तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है। क्योंकि हर कोई कहता है, यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो, तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: This is the tribute to Talaiwa from King Khan and one and only
2: Yo Yo Honey Singer.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go non-donkey, have a funky time.
2: Bollywood music ka debate kabhi khatam hi nahi hota. ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड. शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं. पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए हैं. दोनों का ना अपना ही एक अलग चार्म है. एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है. और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है. वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI. फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la vieva la burga, Mirci, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted platform to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: ओह नो,
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8 बे 1600. Jai Gurudev.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
17: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन ग्रोव एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए. फ्रॉम ऑगस्ट 6th to 16th, एंजॉय flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
11: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
12: I am not going to bed with you ever again.
11: But why? What did I do?
12: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
11: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
12: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
11: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
12: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
13: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.

0: at 7:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
2: जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धू। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, it's hot।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi siddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।